0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: योगी जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप कॉल्स के थ्रू. हमारा सेगमेंट होने वाला है दैट इज सुर लगाओ गाना सुनाओ, जिसमें आप लोगों की लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे. फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है मुझे. ओके हेलो हेलो. ओके जी, आवाज नहीं थी कॉल में. 03000113488. एक और कॉलर इंटरटेन करेंगे, चेक करेंगे. हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: आपसे सवाल बात कर रहा हूँ. मेरा से क्या है, ठीक हो? तबियत ठीक हो?
0: हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप ठीक ठाक है? खैरियत से हैं
1: जी? जी मैं गाना सुनाऊंगा आपको.
0: गाना सुना दे.
1: महक मलिक की आवाज में सॉन्ग है.
0: महक मलिक गाने कब गाती है?
1: जी जी महक मलिक के सॉन्ग है
0: जी. सुनाई
1: संगता मुकाते क्या मिले ओ बेवफा सोचे कहा दुश्मन खिलाते क्या मिले ओ बेवफा सोचे कहा.
0: ओके ठीक है
1: मेरे दोस्त है.
0: हाँ जी.
1: हाफिज लख मेरा मन ढेलो ताहिर लंड जवर बचल शंबानी और हाफिज अजीम ढेलो हाफिज ढेलो जो भी सुना है मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
0: ओके चल आपस. और ये रहा आपका गाना.

0: कॉलर लेते हैं. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: नूर हुसैन सुनिया फ्रॉम बदीन.
0: नूर हुसैन सुनिया फ्रॉम बदीन, कैसे? ठीक
1: ठाक सर. आप ठीक हो?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ.
1: कौन सा लाए थे
0: जी? कौन सा?
1: सम्मान का है लखनऊ श्री मुकाम को श्री.
0: ओके, गा के नहीं सुनाएंगे?
1: लखनऊ श्री मुकाम को श्री मुझे साहब में समाज वही वाइन प्री.
0: ओके जी, मैं प्ले करती हूँ. और ये क्या टाइटल है इस गाने का?
1: जी
0: क्या टाइटल क्या बताया इस गाने का? ओके जी, मैं प्ले करती हूँ. और कुछ?
1: बस सर, ठीक है सर.
0: हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें.

अली भाई का गाना हम प्ले करते हैं और ये रहा गाना, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और ब्रेक के साथ वापस आएंगे.

0: सईद बात कर रहा हूँ सिंध सोसाइटी सेक्टर से।
1: सईद भाई कैसे?
0: बाजी अल्हम्दुलिल्लाह लजपत। आप सुनाओ ठीक हो?
1: हाँ जी मैं ठीक हूँ। कौन सा गाना सुना रहे हैं हमें?
0: गाना सुना रहा हूँ आरजी फायजा अली का।
1: सुना दे
0: सिंधी सॉन्ग है।
1: ओके।
0: दिल बच बच बच तो खा प्यार बुचो आ। दिल बच बच बच तो खा प्यार बुचो आ। हिने संसार में इजहार बुचो आ। दिल बच बच बच।
1: आरजी
0: माशाल्लाह आ रहे हमारे पाकिस्तान का भी सेगमेंट का हमारे को बहुत इंतजार है माशाल्लाह। कल में आप नए पौधे की मालूम दी बहुत बहुत शुक्रिया
1: है ना।
0: हाँ बहुत मजा आया। और एवोकाडो के बारे में आपने मालूम दी मैं बहुत शौक से सुन रहा था। कल शामिल नहीं हो पा रहा कॉल वगैरह।
1: सुनिएगा 12 बजे के बाद। आज भी 12 बजे के बाद सुनिएगा।
0: जरूर जरूर सुनूंगा इंशाल्लाह। और बहुत मालूम दी माशाल्लाह। ये पूछना करूंगा आपको ऐसे सवाल की आपको चुन चुन के माशाल्लाह वो मेरे समझ लो सारे सवाल जो थे वो आपने खुद को खुद कर दिए।
1: अरे वाह बस इसी मोहब्बत और सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की तरफ से। और इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे सेगमेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे
0: माशाल्लाह। जरूर जरूर आजी ये भी नया पौधा है अभी ये भी इंशाल्लाह ये भी हम ट्राई करेंगे लगाने की कोशिश करेंगे जरूर भी। और माशाल्लाह आपका पूछने का ऐसा अंदाज तरीका है मैं आपको क्या बताऊं शायद कोई इंजीनियर भी आज ऐसा सवाल आप नहीं कर सकता है जैसे माशाल्लाह आप कर रहे हैं बहुत तरीके से।
1: चले जबरदस्त जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर सो मच अप्रिशिएटिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें सईद। अल्लाह हाफिज। और ये थे स्वीट कॉलर सईद। और इसी के साथ मेरे ब्रेक पे जाने का वक्त करीब आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो हम एक गाना प्ले करेंगे गाने के साथ न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक। दोनों के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपना सेगमेंट अगला कर रहे होंगे जिसका नाम है हरा भरा पाकिस्तान। और हरा भरा पाकिस्तान में आज हमारे साथ एहतसाम मौजूद होंगे। और एहतसाम आज देखते हैं कि हमें किस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन जी एफ एम रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अमरीका ईरान विच में कतनमित टाकरे जरिए गालियों गालियों जो बेदो और शहीद आयतुल्ला खमनाई जी आखिरी रस्म बाद रखने के इतफाक पाकिस्तान कतर पारा तस्दीक पर तर्जमान चवैत कतरी सालसन अमरीकी ईरानी नुमाइंदन से अलग अलग मुलाकातों कई हैं। स्विट्जरलैंड में थियल गालियों ने इस्लामाबाद मफामती यादाश नामे से अगभराई किया है। बिन्हीं मुल्क विच में गालियों जो बो दौर शहीद आयतुल्ला खमनाई जी आखिरी रस्म बाद कतरी पर वजारत मूजिब अमरीका ईरान गालियों जारी रखने इतफाक किया है। आयतुल्ला खमनाई के जनाजे बाद बिन्हीं मुल्क में गालियों का सिलसिलो शुरू थी वो।
1: सदर ट्रंप वाजिब मकसद बिना ईरान खिलाफ बीहर कार्रवाई के हक में ना है। ईरान के एटमी प्रोग्राम की बहाली वाशिंगटन के हिकमत अमली तब्दील कर मजबूर कर सके थी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस है दोहा में थींदड़ गाल सुठे अंदाज में अगते वधी रही है। अमेरिका गाल नेक नियति से कर रो है।
0: ईरान जो अमरीकी इसराइली बमबारी से मुतासर थे एटमी वागन तई आलमी तवनई एजेंसी के रसाई दिन का इनकार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कारीबाद है तो पार्लियामेंट ए सिक्योरिटी काउंसिल पारा मंजूरी दिल वागन तई आलमी तवनई एजेंसी के रसाई डी वे वजीर काजम गताब नहुरमज सेंट काम के नफर ईरान के कंट्रोल में है। फौजी इजलास अब नहुरमज की सिक्योरिटी जो जामिन नो थी।

0: Tayo sa ato.
1: जयपुर में जो कारी इंजाम ने हेठ मुड़ सदारत के कत्ल कर छो घोट हाफिज सजन मैसर में जवाब दरला बख्श मैसर जाल साबरा के कत्ल कर फरार थी पो दो दो पे जो घर मौर जो गोड़ी लगल लाश घोट घर पंजा में शादीशुदा औरत हुमेरा हाजे जो घर में लाश मिलो पुलिस चव है तो वाकई कारी इंजाम थी सके तो अधिक जांच जारी है।
0: प्रोवे जो बासरन पारा मुबैना तौर तंग करण बाद आपघात कंदर नारी जो केस दाखिल थियण बाद भील बिरादरी पंज हंधन ते लगल धरणा खत्म करे छड़िया। नारी हेमे जे वालिद सवाई भील जे फरियाद ते बिन जवाबदारन वनेरे फतेह दुर्स ऐं कमदार कासिम राजर ते दाखिल कयो वयो। केस दाखिल थियण बाद नारी जे वारसन धरणा खत्म करे छड़िया।
1: दादू शहर के बुनियादी मसलन के हल लाए दादू राबता कमेटी और सिविल सोसाइटी धरणो भुख हड़ताल शहर का बुनियादी मसला हल करण जो मुतालबो। अखबारों चो तो शहर में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग थी रही है। पीण जो साफ पानी और सेहत जो सहूलतू भी ना शहर का बुनियादी मसला हल क्या वन
0: शहरो फेरोज ऐं कुंडलीअ में जूनियर साइंस टीचर टेस्ट पास उम्मीदवारनि जो मुतालबनि जी मंटा लाइ एहतजाज। टेस्ट पास उम्मीदवारनि जो मेरिट ते नौकरियूं ॾियण जो मुतालबो।
1: जोई में घोट अलादाद लगारी जो घोषणा जो जोई पुलिस खिलाफ एहतजाज। थाने आदो धरणो पुलिस से कूड़ा केस दाखिल करे घरन ते बिना जवाब चढ़ायूं करण जो इल्जाम। मुजाहिरीन चो तो पुलिस बिना जवाब कूड़ा केस दाखिल करे घरन ते चढ़ायूं कर रही है। कूड़ा केस खत्म करे इंसाफ कयो वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहां वहां जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और वापस आ चुके हैं जी एक अदद ब्रेक के बाद. और बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. और मैसेज रिसीव हुआ है हमें. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. शहर गुलाब लगारी नज़्द गोट बाशम खान रिन से शायर गाजी खान रिन और रिजवान अली रिन फैजान अली रिन शहजाद अली रिन छोटी कोनैन जेरा बाजी आपका शो सुन रहे हैं. आपकी बोलने का अंदाज अच्छा है. आपसे शिकायत है कि आप मेरे गोट का नाम गलत पढ़ती हो. यही तो लिखा है नज़्द गोट भाशम खान. यही तो लिखा है आपने. तो इसको गलत कैसे रीड कर रही हो मुझे ये बताइएगा.

अलावा जी एक और मैसेज वैसे हुआ है. अस्सलाम वालेकुम सिंध की आर जी रुखसार, कैसे हो आप? हमेशा सलामत रहो. आपकी वॉइस बहुत अच्छी है माशाल्लाह. आप सकते थैंक यू वेरी नाइस. अच्छा लगा मुझे. ओके ब्यूटीफुल सॉन्ग.

वापस आ गए हैं. लास्ट लकी कॉलर्स भी लेंगे 03000113488 के ऊपर बहुत सारी. और इस वक्त हमें जैन सुन रहा है और जैन की मम्मा सुन रही है.

अच्छा, इसके अलावा हमें एक और मैसेज रिसीव हुआ है शहबाज जमाली नवाब शाह से, आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है. थैंक यू शहबाज जमाली. इकबाल आशादी भी हमें सुन रहे हैं, गुलाम अली हमें सुन रहे हैं. गुलाम अली जागीरानी हेयर, पहली बार आपके शो में शामिल हो रहा हूँ. आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छी है. सलाम टू सिराज जागीरानी. थैंक यू. तारीफ के अलावा भी और बहुत सारी बातें होती हैं करने को, वो भी कर लिया करें. रियाज भट्टी हमें सुन रहे हैं फ्रॉम लाहौर, अमेजिंग शो. थैंक यू रियाज भट्टी. सॉन्ग प्ले करेंगे और साथ में लास्ट लकी कॉलर्स को एंटरटेन करेंगे.

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: चौमासी दिवस कारण तबाही करे चली मुख्तलिफ शहरन में हादसनि जे नतीजे में 11 ॼणा फोत 19 ॼणा ज़ख़्मी पंजाब केपी खां वधीक मुतासिर घरनि जो किरण सबबि चइनि ॿारनि समेत 7 ॼणा फोत थी विया। पंजाब में तूफानी बरसाति दौरान ॿिनि ॼणनि जे फोत थियण जी तसदीक। बलूचिस्तान में बरसाति सबबि हिकु ई खानदान जा 2 ॼणा फोत थी विया। सिंध में सुभाणे ऐं ॿिए ॾींहं तूफानी बरसातुनि जी अॻकथी थियल। मौसमियात खाते चयो आहे त राणकाणो, सखर, जेकमबाद, खैरपुर, मछरफरोज, नवाबशाह ऐं दादू समेत मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में सुभाणे ऐं ॿिए ॾींहं तेज़ बरसाति पवंदी। कराची में वसकारे जो इम्कान

0: पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब सिक्योरिटी वारे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ॿिन्ही मुल्कनि जे घरू वज़ीरनि पारां मुफ़ाहमती याददाश्त ते सहियूं बि कयूं। सऊदी घरू वज़ीर अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद चयो आहे त पाकिस्तान जे घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां गॾु सिक्योरिटी वारे शोबे में सहकार खे हथी ॾियण वारे मुआहिदे ते सहियूं कयूं आहिनि। क़दम सऊदी अरब ऐं पाकिस्तान विच में गहरनि दोस्ताणनि लाॻापनि जी अकासी करे थो।
1: अमरीका ईरान विच में कतर में चाकरे ज़रिए ॻाल्हियुनि जो बियो दौर। शहीद आयतुल्ला खमनाई जी आख़िरी रस्मनि बाद रखण ते इतफ़ाक़। पाकिस्तान ऐं कतर पारां तसदीक पढ़ी तो अचबाद चयो आहे त कतरी सालसन अमरीकी ऐं ईरानी नुमाइंदनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि इस्लामाबाद मफ़ामदी यादाशनामे ते अॻभराई थी आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॻाल्हियुनि जो बियो दौर शहीद आयतुल्ला खमनाई जी आख़िरी रस्मनि बाद थींदो। कतरी पढ़ी वज़ारत मूजिबि अमरीका ऐं ईरान ॻाल्हियूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। आयतुल्ला खमनाई जे इरादे बाद ॿिन्ही मुल्कनि में ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू थी वेंदो।
0: صدر ٹرمپ واضح مقصد بنا ایران خلاف بیئر کاروائی کے حق میں نہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی بحالی واشنگٹن کے حکمت عملی تبدیل کرنے تے مجبور کرے سکے تھی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چیو ہے تو دعا میں تیندڑ گالیوں سٹھے انداز میں اگتے ودی رہی ہیں۔ ایرانی نائب پرنے وزیر قاسم غریب آبادی چیو ہے تو ابنار منسن تے کام جے نہ پر ایران کے کنٹرول میں آئے فوجی جے سیکورٹی جو ضامن نہ تو تھی سکے۔
1: कराची में अक़लियती मामलनि बाबति ख़ासि सेनेटर्स अक़लियती एमएनएस शरीक प्रिया कुमारी समेत अक़लियतनि बाबति मामला गौर हेठ। चीफ सेक्रेटरी जे गैर हाज़िरी ते कमेटी पारां कावड़ जो इज़हार। एस एंड जी डी जो चीफ सेक्रेटरी जे गैर हाज़िरी ते वज़ाहतूं।
0: सिंध में कारे इल्ज़ाम हेठि वधीक ॿ औरतूं क़तल। जवाबदार फरार खैरपुर वेझो कारे इल्ज़ाम हेठि मुड़ुस ज़ाल खे क़तल करे छॾियो। ॻोठु हाफिज़ सजण मैसर में जवाबदार अलाबख़्श मैसर ज़ाल साबरा खे क़तल करे फरार थी वई। दादू वेझो बि मुड़ुस ज़ाल खे कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल करे छॾियो। पुलिस मूजिबि ॻोठु घर पंहिंजा में शादीशुदा औरत उमेरा हाजी जो खे मुड़ुस ज़ाल ज़ाहिद हाजी जो कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं।
1: खिपरो वेझो बासरनि पारां मुबैना तौर ते तंग करण बाद आबकार कंदड़ नारी जो केस दाख़िल थियण बाद भील बरादरी पंजनि हंधनि ते लॻल धरणा ख़तम कयो छॾिया। नारी हेमी जी वालिद सवाई भील जी फरियाद ते ॿिनि जवाबदारनि वॾेरे फितोदस ऐं कमदार कासिम दादर ते दाख़िल कयो वियो। केस दाख़िल थियण बाद नारी जे बासरनि धरणा ख़तम करे छॾिया।
0: दादू शहर जे बुनियादी मसलनि जे हल लाइ दादू राब्ता कमेटी ऐं सिविल सोसाइटी जो धरणो ऐं भुख हड़ताल। शहर जा बुनियादी मसला हल करण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो आहे त शहर में बिजली ऐं गैस जी बदतरीन लोड शेडिंग थी रही आहे। पीअण जो साफ़ पाणी ऐं सिहत जूं सहूलियतूं बि न आहिनि। शहर जा बुनियादी मसला हल कया वञनि।
1: मुज़फ़्फ़रपुर ऐं कुंदरीअ में जूनियर साइंस टीचर्स टेस्ट पास उमेदवारनि जो मुतालबो जी मञता लाइ एहतजाज। टेस्ट पास उमेदवारनि जो मेरिट ते नौकरियूं ॾियण जो मुतालबो।
0: जोहीअ में ॻोठ अलादाद लगारी जे ॻोठाणनि जो जोही पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज। थाणे आॾो धरणो। पुलिस ते कूड़ा केस दाख़िल करे घरनि ते बिना जवाज़ चढ़ायूं करण जो इल्ज़ाम। मुज़ाहिरीन चयो त पुलिस बिना जवाज़ कूड़ा केस दाख़िल करे घरनि ते चढ़ायूं करे रही आहे। कूड़ा केस ख़तम करे इंसाफ़ कयो वञे।

0: क्या बात है जी, असा सरदा सौदा कर बैठी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलाम यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे थे और इसके साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप इस्तेमाल करते जाएंगे और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाएंगे और हमें बताते जाएंगे कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और साथ ही साथ अगर खूबसूरतियाँ आप हासिल करना चाहते हैं लेकिन ये चीज है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल मिल नहीं रहे हैं, आपने मालूमात ली है लेकिन आपके यहाँ अवेलेबल नहीं हुए अभी तक, तो उसके लिए आप डायल करते हैं 03 15 7 99 05 95। ये जल्दी से नंबर जो है ना आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं और आप इजीली वहां से जाकर परचेज कर सके। ओके जी, तो अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होगी किस तरह आप बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ पहले जो है ना आप लोगों के लिए आज के प्रोग्राम का सवाल क्या है वो बताते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो कुछ इस तरह से होने वाला है। कुछ लोगों की ना ये बड़ी आदत होती है कि वो ना मतलब बहुत ज्यादा जो ना वो सच बोल रहे होते हैं। ऐसा है कि कहते हैं कि भाई अच्छी बात होती है सच बोला करे, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है ना कि कुछ अगर आप सच ऐसे होते हैं जो अगर आप बोलते हैं तो किसी इंसान को बुरा लग जाता है, किसी की दिल आजारी हो जाती है। तो हम ये भी सोच रहे होते हैं कि अगर हमारे सच बोलने से किसी की दिल आजारी होती है तो कई मरतबा हम ये सोचते हैं कि क्या ये चीज सही है या फिर गलत है। तो आज जो मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है ना वो कुछ इस तरह से होगा कि क्या हर सच बोल देना जरूरी होता है या फिर नहीं। मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कि आप इसके क्या हर सच बोलना जरूरी होता है या फिर नहीं। और इसके अलावा अगर आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आइए वहां पर और हमारे साथ साथ ज्वाइन हो जाइए। आपको हमारे प्रोग्राम की पोस्ट मिलती है बिल्कुल लाइव व्हाइट एशियन जी स्किन ब्यूटी शो की, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और बताइए आप ये हमारे साथ मौजूद हैं और आपका क्या ख्याल है कि क्या हर सच बोल देना जरूरी है या फिर नहीं। क्योंकि कई मरतबा हम जरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस मेरे सच बोलने की वजह से अगले इंसान के ऊपर जो है ना थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है या फिर थोड़ा सा मसला बन सकता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका इस टॉपिक के ऊपर क्या रद्दअमल होने वाला है कि आप बताइए कि क्या हर सच बोल देना जरूरी होता है या फिर नहीं। और आप मुझे ज्वाइन कीजिए 8881 पर और फेसबुक पर, जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाइए और पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। जितना शेयर करेंगे उतना लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में अब कौन से और कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो जरा बात की जाए कि जब आप लोग अवेलेबल कराना चाहें और आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अवेलेबल कराएंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र आता है तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, उसके साथ व्हाइट एश लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है और व्हाइट एश सोप है, व्हाइट एश फेस वॉश है, व्हाइट एश लोशन है, व्हाइट एश हेयर रिमूवल लोशन है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है, उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है एंड डी स्किन फेस वॉश है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली किसी भी जनरल स्टोर से जाकर मालूमात ले सकते हैं, मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहे तो फिर उसके लिए आपको नंबर बताया जा रहा है जिसके ऊपर आप रब्ता करेंगे ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं। जल्दी से अवेलेबल कराते जाइए और इस्तेमाल करते जाइए और मुझे बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके जी, आपके फीडबैक्स हैं जो कि हमें मिलते जा रहे हैं, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप लोगों की वजह से हमारे प्रोग्राम में रौनकें होती हैं जनाब। तो बिल्कुल जी, हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाइए और बताइए आप कहाँ से हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। आदिल हुसैन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ आदिल, आप बताएं आप कैसे हैं। हजार खंजे तो ये हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू शो। अच्छा, फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मौलाना सलाम अदब, मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे हैं। नजीर खोसो में सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, खुश आमदीद, और लिखते हैं कि ताकत हमेशा हक नहीं होती और हक हमेशा ताकतवर नजर नहीं आता, लेकिन सच्चा किरदार आखिरकार लोगों के दिल जीत लेता है। चलो आज से हम अपने किरदार को मजबूत बनाने का अहद करें। ओके जी, बहुत बढ़िया। और हजार खान भाई कहते हैं हम भी आपके साथ साथ हैं, बहुत शुक्रिया जी, हम साथ साथ ही वाली टीम बनाते हैं। और जी शिराज अली मरसद मौजूदी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कैसी हो पहचाना मैं कौन हूँ नहीं जी मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना आपको और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद कहते हैं ग्रेट होस्टिंग मैम आज थैंक यू सो मच सर बंडल ऑफ थैंक्स और चाचा खालिद हमारे साथ मौजूदी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट ओके नोट कर दी आपकी रिक्वेस्ट मैंने मोहम्मद जमान हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम वेलकम टू शो अच्छा शिराज कहते हैं ये आईडी तो शिराज की है लेकिन ये जो शो सुन रहा हूँ मैं कौन हूँ मुझे थोड़ा थोड़ा हिदायतुल अहमदानी लग रहा है बाकी नहीं पता और साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ मौजूद हैं वालेकुम अस्सलाम मिठो देरों से आपने हमें ज्वाइन किया है बहुत शुक्रिया और मासूम अच्छा उदास निदड़ी हमारे साथ है उदास निदड़ी हैं कहती हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारी आरजे वेलकम टू शो मैं भी आ गई जल्दी जल्दी से अब हाँ पैरों में दर्द हो रहा है चलिए इतनी जल्दी से मैं मत आया करें ना वैसे आज आप सबसे पहले आ चुकी हैं प्रोग्राम में आपको वेलकम कहा जाता है और अब्दुल अजीज हमारे साथ हैं वेलकम करते हैं फराज अली बिरोही हमारे साथ हैं खुश आमदीद अनवर भाई हमारे साथ हैं अदी आखिर में हलाए जो ही वारो गानो चलिए मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल सबकी फरमाइशें लगाएंगे एम अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं वालेकुम अस्सलाम वेलकम जी आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और हजार भाई कहते हैं कि आज कोई सॉन्ग सुनाना शमन का डेडिकेट माय क्राइम पार्टनर योर टॉपिक आंसर सच बोलना जरूरी नहीं चले ये ठीक बात है आपके मैसेजेस मुझे मिलते ही जाएं मैं देखती जाऊंगी कि आपका क्या क्या जवाब होगा इस टॉपिक के ऊपर कि क्या हर सच बोलने देना जो ना जरूरी होता है या फिर नहीं क्योंकि अक्सर हमने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं सच तो गाला हुआ है पर उन सच की वजह से केतर मानो जो जिंदगी तबाह थी वेंदियूं आहिनि या फिर उन्हें जिंदगी ते केतिरो इफेक्ट पवंदो आहे उन्हनि चीजुनि खां असां थोरो
1: कमर्शियल ब्रेक अब आपकी खूबसूरत

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
1: आन रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ जी FM 88 नेटवर्क ते
2: दसबन के मोहब्बत का सास GAFM 88 की आवाज
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
4: के मत वाले हम मीरपुर खास वाले और मीरपुर खास की आवाज GAFM 88

थोड़े से दाने भी हैं थोड़े, तो आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड भी कर सकते हैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब, यानी कि दोनों चीजें आप मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइटिश लवली क्रीम अगर आपके पास मौजूद है या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइटिश की जो लवली क्रीम है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियंट अल्ट्रा विटामिंस के साथ तैयार की गई है, 30 विटामिंस के कैप्सूल ऐड किए गए हैं। बात यहीं पर नहीं रुकती, इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड किया गया है जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी सूरज के इन खतरनाक असरात से। और इसके अंदर विटामिन B3 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है एंड विटामिन ई मौजूद है। इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अगर आपके पास मौजूद है तो आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। लड़के हो लड़कियां हो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को फार्मूले यूज करने का बड़ा शौक होता है ना, फार्मूले भाई वो यूज करना चाहते हैं, तो आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लीजिए, उसके अंदर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब ऐड कीजिए, व्हाइटिश लवली क्रीम ऐड कीजिए। ये इतना बेहतरीन आपका फार्मूला बन जाता है ना कि जिसे आप लगाएंगे तो आपकी खूबसूरती जो है ना वो डबल हो जाएगी। वो प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खूबसूरती बढ़ेगी और बढ़ने के साथ साथ हमेशा आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट भी रहेगी। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए और डायल करते रहिए 03-15-799-0595 0315-79

तमाम प्रोडक्ट्स ऐ उन खां पोई तमाम जिगुआ इस्तेमाल करी सगो था ऐ पाजी खूबसूरती के वधाए सगो था सो प्रोग्राम आई जनाब वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए क्या हर सच बोल देना जरूरी होता है या फिर नहीं क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए थी और कहते हैं बदले में मां तो सच्ची गालाए हुआ है तो बताइए हर सच बोलना जरूरी होता है या फिर नहीं

प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें कौन सा प्रोडक्ट बताइए मुझे जल्दी से टाइम की बड़ी किल्लत है हमारे पास और चाचा खालिद क्या कहते हैं नहीं जरूरी नहीं हर सच्ची बात बोलना जैसे मुझे देखो कितना जब्त का दामन थाम कर बैठा हूँ आपके साथ साथ शो में ये टॉपिक आंसर तमाम साथ दुनिया भर जा जेके भी गमन मुख लगे तो चाचे जी झोली में प्याला है अल्लाह से आगे खुश करे अयुना अलावा आकाश अली हमारे साथ मौजूद है आप ही आप कैसी है मैं आकाश अली पीरजादो फ्रॉम मोरो सिटी वेलकम करते हैं मोरो वालों को अच्छा निदली कहती है टॉपिक नहीं नहीं मैं तो ऐसा ऐसा सच नहीं बोलती जैसे इंसान को बुरा लगे या वो हर्ट हो जाए ओके किशोर भाई हमारे साथ है आओ भी अच्छी वजह से अदा खुश आयो सफा मजे में ताओ उदा किया है और अनवर भाई कहते हैं सिदरा सुनाणी भी न थी सुनाणी था बाबा सुनाणी था ताकि सुनाणी दासी बाकी कहें सुनाणी दासी और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद है कहते सच बोलना सही है ओके और निदरी कहती है कि हाँ वो कल तुमने बोला था ना कि शो में आया करो इसीलिए मैं जल्दी आ गई और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ हाँ जी कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है और मौलाई मुजाहिद बोजारो हमारे साथ मौजूद है ठूप चूसर से वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ जी आप बताएं आप कैसे हैं ठीक ठाक है मजे में और ये कहते हैं वैसे कसम से तुम जैसा समझदार मैंने कहीं नहीं देखा अपनी जिंदगी में देखो पहचान लिया ना कोई भी लिसनर छुप नहीं सकता तुमसे हाँ ये बात है मैं हर किसी को पहचान जाती हूँ मैं ना छोटा सा डिटेक्टिव हूँ मेरे अंदर ना ये चीज है कि मुझसे कोई भी चीज जो है ना वो छुप नहीं सकती कोई भी इंसान मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकता पता नहीं क्यों ये है मेरे अंदर और कई बार तबाह मुझे ये लगता है कि शायद ये चीज मेरे अंदर ना होती तो कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद मुझे ना पता चलती और मैं जिंदगी में खुश होती क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें जिंदगी में अगर पता चल जाती हैं तो हमें तकलीफ देती हैं तकलीफ का बायस बनती हैं तो कुछ चीजें हाइड ही रहें तो अच्छा होता है

0: बताएं जरा कितने जख्मी हुए. हां जी पकड़े गए.
1: आंखें जैसे शोला सबने दिल का राज खोला. मैं तो जानू जानू.

बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप एंजॉय करें। काफी दिनों के बाद हमने बिजली गाना एंजॉय करा और मेरा बड़ा दिल था कि हम बिजली गाना भी सुनेंगे जनाब। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं जल्दी से बताइए। और मुलायम मुजाहिद 2000 कहते हैं सिडू जी आज तो मेरी पसंद का गाना लगाइएगा। बिल्कुल जी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक अगर आपका सच किसी बेशोर या मासूम इंसान को नाहक नुकसान पहुंचाता है तो वहां रुक जाना बेहतर है, लेकिन अगर सच छुपाने से किसी और के साथ नाइंसाफी हो रही है तो सच बोलना आपका फर्ज बन जाता है। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। ओके जी, और किशोर भाई क्या कहते हैं टॉपिक सब खां पहरियां सच चवण जो हौसलो हुजे बियो सच किथे चवणो आ हिन जी पे समझ हुजे। ओ इहा गाल। अच्छा ए मंसारी कहते हैं टॉपिक पे से जो बात सीधी है, बंदा अपनी बात सच कहे तो हम सच वही बोलते हैं जिसमें हमारा फायदा हो या हमें क्रेडिट मिले, लेकिन मैंने जो वक्त हालात और रिश्तों से सीखा है जब आप ज्यादा सच बोलेंगे तो अकेले हो जाएंगे, बट अगर किसी की दिल आजारी या कोई रिश्ता बच जाए और अच्छा बच जाए तो घनो गामू से चार नहीं हो बट बल होता है। लोगों को आईना दिखाओ तो उन्हें अपना चेहरा पसंद नहीं आता। कयूं तो छा कयूं प्ले लेला बाय अली जफर। ओके गाना अच्छा बोला है लगाते हैं, वैसे तवां जी गाल में बिल्कुल दमा है। मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि जब भी आप आईना उठाया करें तो पहले खुद देखा करें फिर लोगों को दिखाया करें, लेकिन ये हौसला बहुत ही कम लोगों के अंदर मौजूद होता है।

अच्छा एम अंसारी कहते हैं, एक बात और भी ऐड कर दूं कि लोग सच जल्दी कह देते हैं लेकिन जब सच सुनने की बात आती है तो मुंह बना लेते हैं। बिल्कुल जी ये बात है। और मुजाहिद बोजार कहते हैं, सिडो टॉपिक में एक दिन स्कूल में गया था, पापा ने पूछा मुजाहिद तुम कल स्कूल गए थे, मैं बोलने लगा लेकिन अम्मी बोलने लगी हाँ हाँ कल ये स्कूल गया था, मैंने सोचा पापा को सच बोल दूं, मैंने पापा से बोला मैं नहीं गया था तो पापा ने खूब पीटा, तो मेरे ख्याल में खुद को बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए, क्या बोलती तुम? इस मामले में मैं नो बोलती।

0: स्कूल तो जाना चाहिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये बात है, इतने लंबे लंबे कमेंट्स करे, एक कमेंट पढ़ने के साथ साथ मेरा टाइम खत्म हो गया। अच्छा, उनके अलावा अब्दुल रजाक हैं, अब्दुल रजाक भाई, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और लखमीर अबड़ो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं सॉन्ग सुना दीजिए, गाना सुनाते हैं जी आपको, सॉन्ग नहीं। दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। चंदा जा, जितने भी खूबसूरत लोग हैं उन सबके पीछे वाइट एश ब्यूटी क्रीम का कमाल है। ओ या गाल लगे तो हानी तांगे समझ में आई। मेरी खूबसूरती के पीछे वाइट एश लवली क्रीम का हाथ है, तमाम भी जरूर लगाया जो थे तमाम ही खूबसूरत हो सामांगे। निदड़ी कहती है लगता है सबकी वीसी खुली है, आज इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं, वीसी खुली है वाकई सबके, लग रहा है रोज वीसी खुली बाबा, इलाही सारा मैसेज कमेंट करना करो। और हिदायतुल्लाह कहते वैसे सिद्रा मैंने सुना था। नहीं, धक्के वाला काम जो है ना वो थोड़ा पीछे रहे।
1: सिंध धरती के मतवाले,

0: करें वरतो बिन्हीं मुल्कन जे घरू वज़ीरनि पारां मुफ़ाहिमती यादाश्त ते सहियूं बि कयूं। सऊदी घरू वज़ीर अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद चयो आहे त पाकिस्तान जे घरू वज़ीरनि मोहसिन नक़वी सां गॾु सिक्योरिटी वारे शोबे में सहकार खे हथी ॾियण वारे मुआहिदे ते सहियूं कयूं आहिनि। क़दम सऊदी अरब दोस्ताणनि करे थो।
1: अमरीका ईरान विच में कतर में चाकरे ज़रिए ॻाल्हियूं। ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर शहीद आयतुल्ला खमेनी जाखी रस्मनि बाद रखण ते इतफ़ाक़। पाकिस्तान ऐं कतर पारां तस्दीक। वरी तर्जुमान चयो आहे त कतरी सालसन अमरीकी ऐं ईरानी नुमाइंदनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि इस्लामाबाद मुफ़ामली यादाशनामे ते अॻुवाई थी आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर शहीद आयतुल्ला खमेनी जी आख़िरी रस्मनि बाद थींदो। कतरी परॾेही वज़ारत मूजिबि अमरीका ऐं ईरान ॻाल्हियुनि जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। आयतुल्ला खमेनी बाद ॿिन्ही मुल्कनि में ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू थी वेंदो।

0: चयो आहे त दुआ में थींदड़ ॻाल्हियूं सुठे अंदाज़ में अॻिते वधी रहियूं आहिनि। ईरानी नायब परदेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त अबनार मुरसिल इंतकाम जे न पर ईरान जे कंट्रोल में आहे। फ़ौजी इजलास अबनार मुल जे सिक्योरिटी जो ज़ामिन नथो थी सघे।
1: पाकिस्तान में चौमासी दिवस कारण तबाही कर छी। मुख्तलिफ़ शहरों में हादसों के नतीजे में 11 जणा फौत 19 जणा जख्मी थी पाया। पंजाब केपी बलोचिस्तान इस्लामाबाद में बरसात सबब वही तबाही केपी सब का मुतासर घर छितियों भितियों किरण सब चेन बारह समेत 7 जणा फौत थी पाया। पंजाब में तूफानी बरसात दौरान बिन जणन की फौत थियण की तस्दीक। बलोचिस्तान में बरसात सबब एक ही खानदान जब जणा फौत थिया। सिंध में सुभाणे ऐं ॿिए ॾींहुं तूफानी बरसात की अगकथी थियल। मौसमियात खाते चयो आहे लाड़काणो सखर जकम्बा खैरपुर नथो फौत नवाबशाह दादू समेत मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में सुभाणे ऐं ॿिए ॾींहुं तेज़ बरसात पवंदी। कराची में बि वसकारे जो इम्कान आहे।

हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मस्काना जो खमिस हुई मुख्य खबर रोय वाला चंगो तो बुधाए. और टॉपिक हाँ हाँ बोलना चाहिए, हाँ हाँ बोलना चाहिए. और कहती है कहाँ से लाती हो ऐसे टॉपिक प्यारी, ऐसे सॉन्ग प्ले करो कि मजे हो और माजी भी याद दिला दी आपने स्वीट डियर. और ओए प्यारी हमारे यहाँ लाइट अच्छी है, ससुराल में मायके में नहीं होती थी. फजीला सिंधी हमारे साथ है. मायके वारन जी गिला करी थी बीबी डसिंग थी मायमी के सावरा छा मिलिया छोकरी के बाजी जेका ना पलट जी वे बाबा ने सावरा बल्लाए सुठी गाल है, सुठी गाल है. इंजॉय करो बाबा.

ड्रामे ने हमें बड़ा निराश किया. क्या सोचा था और क्या हो गया. अच्छा शहबाज जमाली हमारे साथ है नवाब शाह से, कहती आपका प्रोग्राम बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया जी. और थैंक यू सो मच, थैंक यू आप हमारे साथ है. अच्छा ये हमारे साथ हैं विलेज मोहम्मद उस्मान बरोही सकरन से, वफा आबिद बरोही, अंतहाल सेबा सिद्रा. शो वेरी वेरी नाइस है, सॉन्ग सुना दे जीशान रोकड़ी की आवाज में. ओके भाई और नखा अलावा. अच्छा ही गानो तो मां प्रोग्राम जी स्टार्टिंग में हलायो. और डेडिकेट मुनव्वर बरोही, अली अकबर बरोही, मोहम्मद हनीफ बरोही एंड वफा आबिद बरोही. और नखा अलावा यासिन गुडाड़ो भाई हमारे साथ मौजूद है. अच्छा यासीन गुडाड़ो भाई सकरण से कहते वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह असा सफा भला आयो अमा बधायो खुश आयो सच जहां बोलना पड़े वहां बोलना जरूरी होता है. ओके वेरी नाइस वेरी नाइस. आई मां सफा मजे में आया इतां का पूछा वराय ता के क्योंकि यही चलता रहता है. माटी का ता बधाय के आयो वरी हुजे माटी का ता बधाय के आयो वरी माटी का ता बधाय के आयो. हमारी जिंदगी में यही चल रहा है. अच्छा मेरे पर खासी अब्दुल्ला महर हमारे साथ है बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइस है सॉन्ग्स नाइस शमन शमन अजीनो बिल्कुल इनो तसल्ली सा वही रो पानी सीटे थे. और रसूला बात है आबिद हुसैन शबानी भाई वाले को वसलाम अदी सच बोलना चाहिए. ओके अच्छा मेरे पर खासी अब्दुल्ला महर है और शुएब महर भी आपके साथ मौजूद है. वेलकम करते हैं दोनों भाइयों को. और साइमा मीर मौजूद है वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह मक्खन जैसी आजे सिड्डो कैसी हो. शो मस्त मस्त बेस्ट है अम्मी जान और वरियाम भाई और सबको सलाम. टॉपिक सच बोलूंगी चाहे क्या भी हालत हो लेकिन सच बोलेंगे. सही है बाबा रसूलाबाद से आबिद हुसैन शम्बानी भाई वालेकुम अस्सलाम कहते अदी सच बोलना चाहिए लेकिन किसी का जाने नुकसान ना हो. कहावत है किसी का सर बचाना सुन्नत है. कसम वाह.

पोस्ट को लाइक और शेयर करें। बाबा छो कंजूसी निखारी अथव छो ये सफा लाइक क्या अथव छो मुझे बुधाए था। उनका अलावा जो माहीन बलोच हमारे साथ मौजूद है, हेलो हाउ आर यू, मुझे सॉन्ग सुनाओ जेडी मशहूर आया तेरी मकरूर आया। ओके ओके। और कहती है किशोर भाई को कहो कॉल पर आया करे और गाना सुनाया करे। किशोर भाई की कॉल नहीं लगती ना मेरे प्रोग्राम में, क्या करे। किशोर भाई बड़े मशहूर हो चुके हैं, क्या चल रहा है ये किशोर भाई। अच्छा अंसर अली हमारे साथ हैं, कहते मात हक सच ई चवंदो आया। ओके अंसर भा तुम मोहब्बत हुआ काफी टाइम का पोई प्रोग्राम में शामिल थे। अच्छा खालिद तुम्हान जो गानो है केड़ो गानो हाने लाया पेरियां जो को फरमाइश किया या ही वारो जो को हाने चयो थो। आप भी चाचा हमें कंफ्यूज कर दे।

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। आप इस्तेमाल कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं मुझे बताइए। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जी बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही, तव्हांजे ॻोठ में अवेलेबल नाहे, तव्हांजे सिटी में नथी मिले, छो त ईअं आसीन थोरो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न हर जॻह अवेलेबल आहे, लेकिन डी स्किन जो फेस वॉश आहे न उहो अवेलेबल थोरो मतिलब लेट थियो हुयो। अगर अञा ताईं तव्हांजे एरिया में नथो मिले त हुन लाइ तव्हांखे डायल करणो आहे 03-15-790-595-0315-79-590-595। ही नंबर आहे जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे एरिया में अवेलेबल कराए सघो था। नंबर ते तव्हां कॉल कयो या फिर मैसेज कयो, ठीकु आहे। उन्हनि वीचारनि खे तंग न कयो, मिस कॉल ॾेई भॼी न वञो।

ओके सोनी हमारे साथ कह रही आप ही देखे ना, आपकी मम्मा मुझे सुनती हैं। अगर सुनती हैं तो बताएं जरा, मम्मा को कुछ बात बोलनी है मैंने। अजय सजाद अली जमाली है नवाब शाह से, शो आपका नाइक से सॉन्ग प्ले कीजिएगा। शमन इट जरूर इंदो बाबा, तां थोड़ो सबर कयो। अच्छा ये भाई कहते हैं अल्लाह सफा अमीन, मान तवा सा चार पंज कलाक गाल है सगांदी चार पंज। और ये रेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से, दिलावर हुसैन सोलंगी, बाजी सिद्रा तवा की आयो, बाजी कुछ तक कदर कयो, शेला गुल जो गानो हलाइंदा कयो, हाजिर हाजिर गानो हलायो था। थैंक यू डेडिकेटेड ड्राइवर नजीर सोलंगी, आसिम अली सोलंगी, सिराज सोलंगी, अल्लाह वसायो एंड सफीर सोलंगी जी नाले। ओके अच्छा अब्दुल रजाक कहते हैं वाइट एश ज्वेलरी शहर हली पोटो स्टाप में कौन थी मिले, वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त आए, ऐसा बुधू था बाबा बुधो था, तांके लगान भी गुर्जे, ऐसा बिल्कुल तवाजे एरिया में अवेलेबल करायूं था।

ईद एंड वेलकम कहा जाता है। और उनके अलावा किशोर भाई कहते हैं, गाइस आपने कभी परी देखी है? नहीं देखी। ये हमारी अदी सिद्रा मुस्कान, इसने भी नहीं देखी बालवी ड्रामे एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, ऐसा कौन करता है भला? अल्लाह से डोर दी

0: ला केड़ियों गालियों कयो था हां एड़ी भी गाल कोनी अच्छा एकड़ो मिनट भी हो सबर कयो टाइम थियो आए दे शॉर्ट कमिशन ब्रेक वठो ता उन खां पे वापसी जल्दी मोटी तवानी चुंदा तवान जो सने 7 पूरी पूरी 3 बजे ताई दवा तवा कडी न वंजो ते बैठा हो जो मा ओ ही वनी ओ ही मोटांदी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हणदा रहो ए सोणा थींदा रहो
1: मीरपुर खास की आवाज
2: सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखिल

सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: GFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: सस्ती कॉपी थी. ओके जी फिलहाल सही आ चुके हैं टू नंबर.
1: मैं हो गया निफिदा तेरा ये नशा मेरे सिर से छा गया ऐसी तेरी अदा मैं हो गया निफिदा.

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ आप लोग मौजूद है, धड़ाम धड़ाम से आपके कमेंट्स आते जा रहे हैं, कुछ ऊपर भागते जा रहे हैं, तो जो बचे हैं उनको शामिल प्रोग्राम रखते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कीजिए। और साथ साथ हैं जी हमारे साथ निदड़ी, हमारी प्यारी निदड़ी हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहते हैं आपको। अच्छा निदड़ी भी खूबसूरत थी, तो जदें का निदा जो है वाई जेस ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करण शुरू कर तमाम भी थो बाबा सोना खूबसूरती मिली वी तमाम के भी। और जहीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, हेलो। अच्छा हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, जहाँ पे कैंसर झूठ बोल देना चाहिए लेकिन वहाँ जहाँ सामने वाले को सच का पता ना हो, वरना कुटकी मिल जाएगी। अच्छा सनोला फिल्म पोर्टर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई जान?

हाँ जी हिदायतुल्लाह बिल्कुल देखा हुआ है और स्मार्टो गोपांग हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, कुंबर सिटी से आप हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद। अच्छा आपने गाना बोला है, गाना थोड़ा आप लेट आए हैं ना, तो गाना जरा आपका स्किप हो जाएगा क्योंकि हम आपका गाना जो ना कल परसों सुन लेंगे। उनका अलावा मुजाहिद बोजार तमाम जो गानों भी हलायूं था बाबा थोड़ो सफा ओ हितरो रो सबर कयो। उनका अलावा जी को आसो बिलाल अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद जनाब। अच्छा ये अब्दुल अहद अब्दुल अहद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है, कितना डिफिकल्ट नाम या मुझे लग रहा है अब्दुल अहद अब्बासी, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी कंदरा से आप हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद। अच्छा चाचा तव्हां खे फेस वॉश खपे तो तव्हां नंबर ते राबतो करियो उन्हनि खां, मालूम कयो तव्हांजे एरिया में किथे अवेलेबल आहे, नाहे थियो त तव्हां अवेलेबल करायो या उन्हनि खे चओ त हू तव्हांखे टी सी एस करे छॾनि।

वसीम शेख तमाम से गुड मौजूद आए मोहबतू तमाजू बबा वी आई पी तमाम शायरी लिखिया पढ़ू था और बिलाल कहते हैं कि वो कहती थी परी जात की तरह बनो फिर शादी करूंगी धूप में घूम घूम कर काला हो गया अब ब्लॉग कर गई उसका मतलब जरा वो नहीं था अच्छा मोतिया से तानी हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम अच्छा अंसारी साहब कहते हैं कि तू बहुत जाजेबो जमील सही जिंदगी जाजेबो जमील नहीं मत करो बहस सिदरा हार जाओगे हुसन इतनी बड़ी दलील नहीं ओ या गाल बिल्कुल सही चाहिए वैसे खूबसूरती जगह ना जरूरी भी होंगी आए थोड़ी अगर तुम्हारी उम्र वधंदी वे थी उम्र से गड गड तुम्हें प्रोडक्ट की जरूरत पवी है यो मायने लाइ चवी छो तो इन गाल की खोड़ सारे मानों के खबर को तो तुम पाँच खूबसूरती जो ख्याल रखो वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट से गड गड तुम्हें डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो भी इस्तेमाल करो पवो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जी तुम इस्तेमाल कर खबर पवी तो तट एक अड़ो प्रोडक्ट मौजूद है जो एतो जबरदस्त है जो तुम कद भी जड़े तरह जो प्रोडक्ट इस्तेमाल को हों छो तो जैसे तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल क्या तो अंदर जी भी चीजों आन जी एड क्यों अस उ चीजों तुम्हारी खूबसूरती के वाइंद तुम्हारी खूबसूरती सफाई वी आई पी चिकनी थी वी तुम पान चवंदा बाबा वाह वाह वाह वाह छा तो सोना थी वह सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नी मिले तो डायल कर 03-15-799-0595-0315-79-595 हाँ लगे तो ये भी नंबर मुख्य याद ही वो ओके जी सो ये तमाम खूबसूरत गानो हलायो फ्रॉम द मूवी कोई तुस्सा कहा इन मूवी जा सब गाना भला है एक का वधिक एक

इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए. बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो. अच्छा फहीम शेख लिखते हैं कि माना कि तूने दर्द बढ़ाए हैं आज तक, हमने भी अपने अश्क छुपाए हैं आज तक. पत्थर जमाने भर के तो हंस कर सहे, मगर शिकवे ना लपर तेरे लाए हैं आज तक. मुफलिसी की झोंपड़ी में जो फाकों का राज है, ये नोहे हमने सबको सुनाए हैं आज तक. वो आके मेरे पास कभी बैठता ही नहीं, ख्वाबों में जिसके दीप जलाए हैं आज तक. सच कहने की सजा तो मिली है हमें, मगर कोड़े तो मसलहत के ना खाए हैं आज तक. ओके जी, वेरी नाइस.

बहुत ही प्यारा सा गाना यहाँ पर आप इंजॉय करें, और साथ साथ वक्त जो है वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा हमारे पास बचा है। शोनी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। शोनी की अम्मी जान भी हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच। और शोनी की अम्मी जान को बस यही कहूंगी कि आप शोनी को ज्यादा तंग मत किया करें। मेरे को खास अब्दुल्ला भाई कहते हैं आपका भाई हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया। हमारे भाई आपको वेलकम करते हैं। और मुनव्वर अली मुगल हमारे साथ, यदि खुश है बिल्कुल भातान जो मोहब्बत हूँ तो आंसर से गड मौजूद है।

अच्छा फोजिया सुमरो जो जेको गानो ना वो थोड़ो मथे भजी गयो सो नेक्स्ट टाइम उदनस अच्छा निदड़ी कहती है कि हां हां मुझे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ने ब्यूटीफुल बना दिया है अब आप सब भी यूज करें और प्यारे प्यारे बन जाएं बिल्कुल जी प्यारे प्यारे बन जाइए और ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम बाजी आपका प्रोग्राम सुनता हूं बहुत और शामिल नहीं हो पाता आप बहुत अच्छी हैं ओके जी आपने अपना नाम तो लिखा ही नहीं बहुत शुक्रिया आपका अच्छा दर्दी दिल कहती हैं कि टॉपिक सच बोलना अच्छी बात है पर कभी सच बोलना महंगा भी पड़ जाता है तो कभी सच बोला करो कभी झूठ बोला करो ओके बिलाल कहते हैं गाना अच्छा है मेरी तरह क्या बात है और रहें जी हमारे साथ एम अंसारी कहते हमें प्रोडक्ट्स की जरूरत है मगर कोई दिलाए ना हाय हाय इतनी सुस्ती सुस्ती या फिर ए गुर्बत सच बताएं क्या मसला है सारी इसमें बिताएं अच्छा वासु भाई हेलो अच्छा अब्दुल अहद अब्बासी कहते हैं मोहतरमा आओ एफएम जो बनाए अच्छा एफएम रेडियो में पहिरियों भेरो शामिल थियो आहे इन लाइ वक्त जी खबर नाहे अवां इनायत फरमायो अवां जो प्रोग्राम कॾहिं ईंदो आहे बिल्कुल भाके ॿुधाईंदासीं मुंहिंजो प्रोग्राम डेली ईंदो आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे जुमे ते मुंहिंजी मोकल हूंदी आहे बाक़ी सॼो हफ़्तो तव्हांजो मथो खाईंदा आहियूं

अनवर भाई मत करें. अच्छा डायल करते रहिए 0315799 0595. और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक लगा देते हैं.

मेरे सो ये बहुत ही प्यारा गाना हमारे प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक है और इसी के साथ साथ आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त भी बड़ा करीब आ चुका है और आबिद हुसैन शम्बानी भाई हमारे साथ मौजूद है कहते अति हाणे कूड़ जो ना फैशन बनजी वो है बिल्कुल बात हाँ सही था जो मुन्नवर मुगल है मेरे को खास है कहते अति लाड़काना में घूमने की कौन सी जगह है भाई बहुत सारी जगह है लाड़काना में घूमने की मतलब बहुत ज्यादा है इतनी कि मुझे पता ही नहीं लेकिन मोहन जो दड़ो जो कि आप घूम सकते हैं उसके अलावा अब तो भाई मुझे लगता है कि रोजाना लाड़काना में एक नया होटल खुलता है ऐसी बहुत सारी जगह है जो कि आप घूम सकते हैं।

हाँ भाई ढो गम मिलियो वेचारे के सो दिल्ली जिकाय हुआ बर्बाद थी वही तसे ऐसा हाने ता निकरण जी बारी कयूं था और उनका अलावा फहीम कहते हैं कि आज मैं चुप करके शो सुन रहा था छो भला का खास गाल हुई बिलाल कहते सिद्रा अब हम हलेंगे फिर मिलेंगे ओके आई एम आल्सो हलेंगे अच्छा वाकई भाई शमन का गाना आज रह गया प्रोग्राम में वरी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में तवांगे शमन जो गाना बुधराइना सी फल्लो सफा वीआईपी शमन जो गाना बुधना सी सो ओके सो वेंदी वेंदी तवांगे चवंदी वेंदम त अगर अन्या ताई तवां सोचो पया बाबा त तवां वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कना था सोचो न बाबा एतरो न सोचिंदा कयो तवां जी खूबसूरती जे का है ना उनके जरूरत आहे त वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जन या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जन उन जो इस्तेमाल कयो तवां आई वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तवां इस्तेमाल कना तवां के हर तरह जो प्रोडक्ट इन जे अंदर मिली वेंदो तवां के नाइट क्रीम मिलंदी तवां के फेयरनेस क्रीम मिलंदी तवां के साबुन मिलंदो तवां के फेस वॉश मिलंदो हर तरह जा प्रोडक्ट अवेलेबल आहे आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आए डी स्किन फेस वॉश भी आए तुम लाजमी लगाए सको था आई तुम जी खूबसूरती वदंदी बाबा तुम खूबसूरत रहो आई पांजे खूबसूरती जो ख्याल रखो आई डायल कयो 03-15-799-0595 ओके सो वरी इंशाल्लाह तुम से मुलाकात मुझे सैटरडे ते थियण वाली आहे 1 बजे का 3 बजे ते तुम जो साथ हुंदो जनाब ओ इए ही साथ रिंदा जी हमेशा रिंदा आयो आई किथे का गलती थी जे माजरत कया थी जिना फीडबैक रहे हैं जिना गाना रहे हैं सबनी का माजरत कयूं था सुमोकरानी नाही बाबू सिन सलामत सलामत अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू ऑल

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क।
1: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ सुभाणे ईरान ऐं तुर्किया जे दौरे ते रवानो थींदो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी जी जनाज़े में शरीक थींदो। पार्टी तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी चयो आहे त पाकिस्तान सिंध ताज़ मुआहदे जी हिकतरफ़ी मुअत्ती खे रदि कयो आहे। सिंध ताज़ मुआहदे बाबति सेमिनार में बि सिंध ताज़ मुआहदे खे हथियार तौरु इस्तेमाल न करण ते ज़ोर भरियो वियो। तालिबान ऐं ख़ारिजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन गज़ब उल हक़ जारी आहे। पाकिस्तान पंहिंजे शहरनि जी सलामतीअ ते को बि ठाह न कंदो। अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन जो इस्तेमाल रोके। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब सिक्योरिटी वारे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ॿिन्ही मुल्क जे घरू वज़ीरनि पारां मफ़ामती यादाश ते सहियूं बि कयूं वयूं आहिनि। सऊदी घरू वज़ीर अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद चयो आहे त पाकिस्तान जे घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां गॾु सिक्योरिटी वारे शोबे में सहकार खे हथी ॾियण वारे मुआहिदे ते सहियूं कयूं आहिनि। क़दम सऊदी अरब ऐं पाकिस्तान विच में गहरनि दोस्ताणनि लाॻापनि जी अकासी करे थो। अमरीका ईरान विच में कतर में टाकरे ज़रिए ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर शहीद आयतुल्लाह खमेनी जी आख़िरी रस्मनि बाद रखण ते इतफ़ाक़। पाकिस्तान ऐं कतर पारां तस्दीक पढ़े तर्जुमान चवाद कतरी सालसन अमरीकी ऐं ईरानी नुमाइंदनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि ऐं इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामे ते अॻुवाई थी आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर शहीद आयतुल्लाह खमेनी जी आख़िरी रस्मनि बाद थींदो। कतरी पार्टी वज़ारत मूजिबि अमरीका ऐं ईरान ॻाल्हियूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। आयतुल्लाह खमेनी जे जनाज़े बाद ॿिन्ही मुल्कनि में ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू थी वेंदो। सदर ट्रंप वाज़े मक़सद बिना ईरान ख़िलाफ़ ॿीहर कार्रवाई जे हक़ में नाहे। ईरान जे एटमी प्रोग्राम जी बहाली वाशिंगटन जी हिकमत अमली तब्दील करण ते मजबूर करे सघे थी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेल्स चयो आहे त दुआ में थींदड़ ॻाल्हियुनि सुठी अंदाज़ में अॻिते वधी रहियूं आहिनि। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़म ग़रीब आबादी चयो आहे त आबने हुरमस जे इनकाम जे न पर ईरान जे कंट्रोल में आहे। फ़ौजी इजलास आबने हुरमस जी सिक्योरिटी जो ज़ामिन नथो थी सघे। पाकिस्तान में चौमासी जे वसकारन तबाही करे छॾी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में हादसनि जे नतीजनि में 11 ॼणा फौत, 19 ॼणा ज़ख़्मी। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान ऐं इस्लामाबाद में बरसातुनि सबबि वॾी तबाही। केपी सभ खां वधीक मुतासिर घरनि जूं छितियूं ऐं भितियूं खिलण सबबि 6 ॿारनि समेत 7 ॼणा फौत थी विया। पंजाब में तूफ़ानी बरसातुनि दौरान 20 ॼणनि जी फौत थियण जी तसदीक। बलूचिस्तान में बरसाति सबबि 1 ई ख़ानदान जा 2 ॼणा फौत थी विया। सिंध में सुभाणे ऐं ॿिए ॾींहुं तूफ़ानी बरसातुनि जी अॻकथी थियल। मौसमियात खाते चयो आहे त लाड़काणो, सकर, जेकमबाद, कैरपुनस, फिरोज, नवाबशाह, दादू समेत मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में सुभाणे ऐं ॿिए ॾींहुं तेज़ बरसाति पवंदी। कराची में बि वसकारे जो इम्कान। कराचीअ में अकलियती मामलनि बाबति पार्लियामेंट जी ख़सूसी कामेटी जो इजलास। प्रिया कुमारी समेत अकलियतनि जे मसलनि ते गौर। कामेटी जे मेंबर्स पुलिस खां प्रिया कुमारीअ जी बाज़ियाबी लाइ वक़्तु ॾियण जो मुतालबो। सिंध पुलिस प्रिया जी बाज़ियाबी बाबति वक़्तु ॾियण खां इनकार। प्रिया कुमारी केस में ग़लति डायरेक्शन में कम करण जो बि एतिराफ़। सेनेट कामेटी जो आईजी सिंध खे इस्तगा कामेटी में तलब करण जो फ़ैसिलो। कामेटी चेयरमैन दनेश कुमार चयो त ख़बर पई आहे त प्रिया जे अॻुवा में कुझु बासर माण्हू मलिस आहिनि। जेआईटी जोड़ी वञे। डीआईजी नासिर आफ़्ताब चयो त प्रिया जे अॻुवा में को बि बासर नाहे। असांजो डायरेक्शन ग़लति हुई ऐं ॿ धाड़ेल मारिजी विया आहिनि। हिकु जेल में आहे। सिंध हाई कोर्ट डॉक्टर शाहनवाज कुमर कतल केस में गिरफ़्तार। पुलिस अहलकार इनायत ज़रदारी ऐं दानिश अहमद जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अदालत पारां ट्रायल कोर्ट खे कानून मूजिबि केस जी कार्रवाई जारी रखण जी हिदायत। दरख़्वास्त में मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त डॉक्टर शाहनवाज कतल वाक़िए बाबति पुलिस पारां हिकु केस दाख़िल कयो वियो। साॻे वाक़िए जो कयो वियो जेको सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ आहे। फरियादी जे वकील मुखालफ़त कंदे चयो त दरख़्वास्त गुज़ार अदालत खे गुमराह करे रहियो आहे। डॉक्टर शाहनवाज़ कुमर खे कस्टडी में क़तल करण जो रुगो हिकु ई केस दाख़िल थियल आहे, पर बाद में अदालत केस मां एटीए जा कलम ख़तम कया। सिंध में कारे इल्ज़ाम हेठि वधीक ॿियूं औरतूं क़तल। जवाबदार फरार खैरपुर वेझो कारे इल्ज़ाम हेठि मुड़ुसु ज़ाल खे क़तल करे छॾियो। ॻोठ हाफ़िज़ सजण मैसर में जवाबदार आला बख़्श मैसर ज़ाल साबरा खे क़तल करण बाद फरार थी वियो। दोदापुर वेझो बि मुड़ुसु ज़ाल खे कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल करे छॾियो। पुलिस मूजिबि ॻोठ घर पंहिंजा में शादीशुदा औरत हुमेरा हाजेजो खे मुड़ुसु ज़ाहिद हाजेजो कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो आहे। वधीक जांच करियूं पिया। منڈیوں میں قتل تل بنجن کی تدفین چورن جوابدارن خلاف کیس داخل پنج گرفتار چھہارا منڈی برساں پرانے تکرار تھا قتل تھل عبد الحفیظ منٹار میرانی جا مڑ جنازے نماز بعد دفنایا ویا پولیس کیس داخل تھن بعد پنجن جوابدارن کے گرفتار کرے ورتو کلاشن کوف پسٹل بہت بھوجپور میں بدامنی خلاف شہری سراپا احتجاج انڈا صاحب دھرنو مظاہرین جو بدامنی تضابط آنے جو مطالبہ رواسن چون ہے تو بھوجپور برپاسے کے علاقے میں امن امان صورتحال انتہائی خراب ہے جس تائیں فرجل سامان واپس نہ تھی تیس تائیں احتجاج جاری رہ شداد کوٹ میں زمین تکرار تا قتل تھل نوجوان کے وارسن جو لاش رکھی دھرنوں جوابدار کے گرفتار کرنے کا مطالبہ گوٹ فقیر محمد بروئی میں مارچ پہل لشکری بروئی کے وارسن علاواری چوک تے دھرنوں ہے سدن چون ہے تو نوجوان کے بے گناہ قتل کیا ویا ہے قتل میں جوابدار کے گرفتار کرے انصاف کیا وجے شہدادپور میں مبینہ طور سے اغوا جانے والی ناری گوری کماری عدالت میں پیش عدالت بیان رکھنے بعد گوری کماری کے وارسن حوالے کر چڑھو گوری کماری چی ہے تو کھینس کئی بھی اغوا نہ کیا ہو گھر کاوڑ جی نکتی ہوئی کھین بھی اغوا نہ کیا ہو کورٹ میں بس ساگو بیان دنو ہے گمبٹ میں تیز رفتار ٹرالر جو موٹر سائیکل کی ٹکر عورت سمیت ٹے رن فوت قومی شاہراہ کلندری ہوٹل وٹ حادثہ پیش آیا عورت
0: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज,
3: ॾाढो सुठो
2: जी ए एफ एम 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: 0333-3722-071.
1: It's 3:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Khan, Muhammad Omar Bugyo, Trust Hospital, Mirwa Road Vejo, District Jail, Defense City, Mirpur Khas.
4: खुशखबरी आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। आवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306-244-7700।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली।
1: Check
2: is brought to you by
3: Muhammad Omar Bugyo, Trust Hospital, Mirwa Road Vejo, District

एक मरतबा एक बुजुर्ग आदमी की आंखों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने एहतियात और परहेज बताया, साथ में ये भी कहा कि अगले मुआयने तक नमाज में झुकने से परहेज करें या फिर इशारे से नमाज पढ़ लें। घर आ जाने के बाद उस बुजुर्ग ने खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया। उसके घर वालों को परेशानी होने लगी। उन्होंने दोबारा डॉक्टर से रुजू किया तो उसने कहा, हो सकता है रोटी या खाना चबाते वक्त आंखों में दर्द होता हो, इसलिए उसने नरम चीजें खिलाने का कहा। एक दो दिन तक घर वालों ने देखा मगर बुजुर्ग ने खाने में कोई तब्दीली ना लाई। कुछ दिनों बाद उन्होंने बुजुर्ग से पूछ ली है कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे। डॉक्टर ने तो सजदा करने से मना किया था ना कि खाना खाने से, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, जिसको सजदा नहीं कर सकता उसका रिस्क खाते हुए मुझे शर्म आती है। तो ये एक इंसान की एक थिंक है, एक सोच है, और उसकी बनिस्बत अगर हम अपनी जानिब देखें, हम क्या करते हैं, हमारा क्या फैल है। हमारा फैल ये है कि वही होना चाहिए जो मैं चाहती हूँ, वही होना चाहिए, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले भी मेरे हिसाब से चलें, और मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें अपनी राय देने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल ही बेकार से लोग हैं ये, इनको तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, बल्कि मेरे इशारे पे चलना चाहिए। हम ऐसा ही करते हैं ना, खुदा ना खास्ता, नाउज़ बिल्ला कहना नहीं चाहिए, हम अल्लाह ताला को भी बता रहे होते हैं कि ये चीज़ बहुत अहम है, ये चीज़ चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में, हमें वहाँ होना चाहिए, उसके साथ ये होना चाहिए, उसके साथ वो होना चाहिए, ये सब हम क्या कर रहे होते। ये हम अपनी ज़ात में अपने आप को जो मुकम्मल समझ रहे होते हैं ना, ऐसा हरगिज़ नहीं है। रियलिटी इसके बरअक्स है। इंसान खुदा का पुतला, इंसान में खूबियाँ और खामियाँ दोनों मौजूद हैं, और मेरे इल्म के मुताबिक, जितना नाकिस इल्म मुझे आता है, मुझ कम फहम के मुताबिक, सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो ज़ात अक़दस हैं वो मुकम्मल हैं अपनी ज़ात में, और वो हमारे लिए रोल मॉडल है, रहमतुल लिल आलमीन है। अगर हम उनके सवाने हयात उठाकर देखेंगे तो हमें उनमें से ऐसा कुछ भी कोई मिसाल नहीं मिलने वाली, कोई वाकया नहीं मिलने वाला जैसे कि हमारी लाइफ में होता है। और रब कायनात ने ये जो कायनात तख्लीक की है, वजह तख्लीक कायनात है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, तो उन्होंने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है। हम अपना एक दिन भी उस हिसाब से नहीं गुजार सकते। उसके बाद हम ये समझते हैं, हमारे दिमाग में फुतूर ये है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ अप डाउन होता है ना, तो हम ये कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अल्लाह ताला को हम नज़र नहीं आते, कि आप बहुत अफसोस का मकाम है। हम डिग्री होल्डर्स, हम अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, और हमारा माशरे में एक बहुत ज़बरदस्त सा मकाम है, और ये सब होने के बावजूद भी हमारी अक़ल का जो खाना है वो उस सबक से खाली है जो हमें आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस ने पढ़ाया था। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अपनी अपनी ज़ात में कोशिश ये करनी है कि आपका जो वजूद है, अगर आपसे कोई फ़र्स्ट टाइम कोई अजनबी भी मिले तो वो आपसे इंस्पायर हो के ज़रूर पूछे कि आप किस मज़हब के पैरोकार हैं, किस मज़हब को फॉलो करते हैं, और यही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो है। ओवर एज लोग भी जो हैं वो अगर बैठें तो झिझक ना जाएं, आपकी ज़ात इतनी जो है इस माशरे में पॉजिटिव होनी चाहिए कि आपसे मिलने वाला आपसे बार बार मिलने की ख्वाहिश करे, और कोशिश यही करनी है आपने कि अपने वजूद को जो है इस माशरे में मस्बत चेंजिंग का बायस बनाना है, ना कि नेगेटिविटी को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना है। आई विश कि आपकी ज़ात जो है आपके पेरेंट्स की जो तारीफ़ होती है ना कि इनका बच्चा बहुत प्यारा है, ऐसे ही आपके बारे में भी कहा जाए कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, और ये किसी अच्छे माँ बाप का बच्चा लगता है, इसकी तरबियत बहुत ही बेहतरीन है। तो आपने अपने वजूद को ऐसा ही बनाना है। यही है आज का पैगाम। आप सबके नाम अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून और खुश आमद। दीद कहेंगे आपको हमारे प्रोग्राम दो